0: present here to encourage our children. This show will be a great chance for them to increase their skills. So, once again, thank you all.
1: अभी भी रंग संगता तथा स्थापित है प्रक्रिया उनसे समाधान है आनंद सभी सुना में एक करीबा मेरे साथ निमावत करवा अपने गौरवीय आराधना पुलिगरे मेरे सर में संभावनीय अमृत